0: राम राम ओ नमस्कार रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा टीकाराम चौधरीसँग आरती चौधरी स्वागत बा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र के समन्वयमा रेडियो टाइगर बर्दिया सिन्हा उत्पादन करल कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा प्रविधि मसेना समन्वित मेरमेरिक जानकारी कृषक बनके पुगेकलाग ओ कृषक हुकल कर्तीला खेती प्रणालीमा ऐना समस्या प्रश्न जिज्ञासा कृषक हुकनके आशा अपेक्षा गुनासो सुझाव सुनकेन मेरमेरिक जानकारी देना उद्देश्य से यी कार्यक्रम संचालन करगेलक हो।
1: यी कार्यक्रम महिनामा दुईचो हरेक महिना एक गते ओ पन्ध्र गते सन्ध्याकै 7 बजे रेडियो टाइगर 99.2 MHz बर्दिया ओस्तक अनलाइनमा tigerkhabar.com ओ मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो मसिफि सुन्ने सेक्जाइट
0: ओस्तक रेडियो गिरह एफएम 90.7 MHz शान्ति बजार ओ अनलाइनमा मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो मसिफि सुन्न सिक्ने माथि कार्यक्रम के फेडोस र प्रसारण बिहान के 7 बजे सुन्न सिक्ने बाटी पुस्तक एक 18.5 BHz यह कार्यक्रम सुन्न सिक्ने बाटी कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र ओ कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ हुकन सेना कृषक हुकन के आशा अपेक्षा ओ गुनासो तथा सुझाव के सम्बोधन एवं कृषि क्षेत्र का मेरमेरिक जानकारी प्रसारण गरिने बाटी
1: पशुपक्षी कनके उत्पादन वृद्धि कैकर कृषक समुदाय के आय आर्जन और जीवन स्तर उठाके देश भर के कृषि क्षेत्र के देहर उत्पादन बढ़ाएक अनुसंधान मसे विकसित प्राविधिक प्रकाशन प्रसारण और अभिलेखीकरण कैकर संचार माध्यम के प्रयोग मसे प्रसार प्रसार करती कृषक को सरोकार अलंकन पुगैना काम ये राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र के मुख्य उद्देश्य रहलबा।
0: नेपाल कृषि प्रधान देश हो जहाँ ग्रामीण समुदाय के मुख्य आय आर्जन के स्रोत कृषि पेशा रहल बा एक और ग्रामीण आय आर्जन के स्रोत कृषि क्षेत्र हिलको कृषि सम्बन्धी प्रविधि ज्ञान सहजो सरल तरीका से न पुगेना परम्परागत प्रचार प्रसार के माध्यम अथवा प्रभावकारी नीति खेलक अवस्थामा नवीनतम प्रविधि मसेन प्रचार प्रसार करक लाग आधुनिक तरीका से हाली हो झट्ट सूचना पुगेना सूचना प्रविधि हो संचार के माध्यम एकदम उपयोगी बिना देख पर्ना हिलको से रिदेव टाइगर के सहकार्य में यह कार्यक्रम प्रसारण हुई थी।
1: सूचना और संचार प्रविधि से कृषक मन के आधुनिक खेती प्रणाली में निरवस्थित समय में आवश्यक सूचना ज्ञान और सीख के पहुँच करा के उत्पादन बढ़ेना सघैना करना और समग्र कृषि विकास में खास भूमिका निर्वाह करल बा कृषक के खेती बारी में सदा दिन जैसी कुछ न कुछ प्राविधिक समस्या देखा पर्न हुईलक और से ओकर समाधान के लिए सूचना और संचार प्रविधि के प्रयोग में से समय में समस्या के समाधान के उपाय कृषक और सरोकार अलंकन देह सीख जाए।
2: आज कार्यक्रम के चौथो भाग हो आज हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रम धान बाली व्यवस्थापन बारे वैज्ञानिक एवं बाली विज्ञ रामदास चौधरी से बातचीत कर लबाटी।
3: आजको हमार खेती हमार कृषि रेडियो कार्यक्रममा धान बाली व्यवस्थापन बारे वैज्ञानिक एवं बाली विज्ञ रामदास चौधरी ज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा।
4: धन्यवाद।
3: आराम हुनुहुन्छ?
4: आराम छु।
3: हामीले विशेष गरी आज धान खेतीसँग सम्बन्धित जानकारीका लागि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ होइन। विशेष गरी यो दाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर तराई क्षेत्रको जिल्लामा बसोबास गर्ने कृषकहरूका लागि हामीले यो रेडियो कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। यो अहिले धान खेती अब धान सुक्ने बेला भएको छ होइन। यस बेलामा किसानहरूले अप्नाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा संक्षेपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न।
4: अब यस्तो छ धान बाली हाम्रो त बर्खे बाली हो होइन। यो धान बालीको बारेमा यो हामी लगभग यसको तयारी 1.5-2 महिना अगाडि हामी जेठतिरदेखि सुरुवात गर्छौँ। अहिले किसानहरूको यो बाली खेतहरूमा रोपिसकेछन् र किसानहरूको खेतमा छ। कुनै कुनै किसानको अब हामी के भन्छौँ भेजिटेटिभ ग्रोथ विकासै अवस्थामा छ। कतैको बाला निस्किने व्यवस्थामा छ, कतैको बाला पनि निस्किहाल्यो लगभग 2-2.5 महिना भयो होइन। त्यसैले गर्दा अब अहिले अपनाउनु पर्ने कुराहरू जस्तै जुन किसानको सबभन्दा पहिला त धान बालीको लागि पानी नै हो। पानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि पानी व्यवस्थापन गरेपछि त्यसमा मल जल हामी होइन जे भन्छौँ त्यसको लागि डिएपी युरिया पोटास हामी रोप्ने बेलामा त डिएपी युरिया र पोटास हाल्छौँ हामी के भन्छौँ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास र दुईचोटि हामी नाइट्रोजन त्यसमा हामी ट्रपडेस गर्छौँ। अब कुनै कुनै अब जस्तै यस्तो छ जुन धान हाम्रो अहिले मनुष फिल्डमा छ बुटिङ भन्दा पहिले छ भेजिटेबल ग्रोथ त्यसको एक हप्ता पहिले हामी युरियाको यो जुन हाम्रो दोस्रो मल हुन्छ दियो भने एकदम राम्रो हुन्छ र पानी हाम्रो यो बुटिङ अवस्थामा बाला निस्किन भन्दा पहिले खेतमा पानी चाहिन्छ पानी नभइकन धान बालीलाई अब राम्रोसँग उत्पादन लिन गाह्रो हुन्छ र त्यो बेलामा झन बढी पानीको आवश्यकता पर्छ त्यसैले पानी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो मल व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अनि झारपात व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अनि मात्रै हामी चाहे जति त्यसपछि अरू कुरा आउँछ रोग किरा व्यवस्थापन हामी त्यसलाई काट्ने भित्याउने सबै कुरा त्यसैमा आउँछ र किसानहरूले अहिले जुन फिल्डमा जाँदाखेरि अब हाम्रो बाली यदि आफ्नो समय अनुसार राम्रो छ भने हेरचाह गर्नु पर्यो।

0: पर्सेन्ट छ, त्यही अनुसार भएपछि मात्रै त्यो हामी त्यसलाई त्यो प्याकिङ गरेर हामी किसानका हात किसानमा बिक्री वितरण गर्न सक्छ।
1: अनि किसानहरूलाई यो कृषि मौसम सल्लाह अनुसारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने
0: हजुर यस्तो छ, जस्तै हाम्रो यो नार्कले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले यो प्रत्येक मौसम हेरेर हाम्रो एउटा त्यो मौसम बुलेटिन बनाउ निकाल्छ। अब मान्नुहोस् एक हप्ता अगाडि के भइरहेछ, तपाईँको बालीको अवस्था के छ, कति पानी पर्छ, अनि कुन बेलामा त्यो बाली, जस्तै मान्नुहोस् अब तपाईँ धान बाली काटिदिनुभयो, भोलि पानी पर्यो भने त्यसलाई त गाह्रो भयो। त्यसैले मौसमको त्यो बुलेटिन एउटा निस्केछ, हाम्रो नार्कले निकाल्छ, त्यही मौसमको अवस्था हेरेर हामी नै त्यो कृषि कर्म गर्यो भने हामी क्षतिबाट बच्न सक्छौँ।
1: अन्त्यमा आगामी अङ्कमा पनि धान भित्र्याउने बेलाको विषयमा पनि यहाँसँग थप विषयमा कुराकानी गरौंला होइन।
0: हजुरको
1: अङ्कमा किसानहरूलाई भन्नै पर्ने महत्वपूर्ण जानकारी के छन् भनिदिनुहोस्।
0: हजुर यस्तो छ, जस्तै अहिले धानको सिजन छ, किसानहरूको सबै लगानी किसानको फिल्डैमा छ, खेतैमा छ होइन। त्यसैले किसानहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु, त्यो जे छ आफ्नो खेतबारीको समय समयमा निरीक्षण गर्दै र केही समस्या छ भने प्राविधिक सरसल्लाह, रोग किरा अरू के छ त्यसको सरसल्लाह लिएर त्यही अनुसार समयमा व्यवस्थापन गरिदियो भने किसानहरूले राम्रो भन्दा राम्रो उत्पादन लिन सक्छन्।
1: महत्वपूर्ण समय र महत्वपूर्ण जानकारीका लागि समय दिनुभयो। बाली व्यवस्थापनका वैज्ञानिक एवं बाली विज्ञ रामदास चौधरीज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
0: ल धन्यवाद।
2: कृषि सम्बन्धी जानकारी, सफल कृषकका कुरा, के हुन् त समस्या, के हुन् त विकल्प, कृषि प्रधान मुलुकमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी, कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, कार्यक्रम हाम्रो खेती हाम्रो कृषि हरेक महिनाको 1 र 15 गते, समय साँझ 7 बजे र बिहान पुनः प्रसारण 7 बजे रेडियो टाइगर FM सुन्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम हाम्रो खेती हाम्रो कृषि
3: गर्जन छ सधैँ बाघ छै रेडियो टाइगर 99.2 MHz।
4: अपना उक्रा अब रेडियो टाइगर 99.2 MHz बर्दिया से रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन्टी बाटी यी कार्यक्रम रेडियो टाइगर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र संघ मिल्क तयार पर्लक हो।
5: अब हाम्रा एकाचि कृषि सम्बन्धी छोटकरी मन गतिविधि सुनि।
6: ऐना साता के मौसम क प्रदेश क कुछ स्थान में वर्षा के संभावना रहल बाकल से लुम्बिनी प्रदेश और सुदूर पश्चिम प्रदेश में शुरू से अंतिम समय वर्षा होती रहल बा। यह बीच कृषि क्षेत्र धान बाली में मरुआ रोग देखदिल कलसे ट्राइसाइक्ला जोल 75% WUP 2 g/L पानी को डर ने 12-14 दिन के फरक में 2-3 पटक समय छिटना कृषि विज्ञ सुझाव दिहल बात धान लगभग 25-30 दिन पाछ ऐना समय में सिफारिश अनुसार यूरिया छिटना ओ औषधि प्रयोग पाछ कमती में 24 घंटा समय खेतों में पानी बहनी देनाफे आग्रह करला बात। फलफूल ओ तरकारी बारी में फे मौसम के अवस्था हेरख विषादी के प्रयोग करना ओ वर्षा के समय में विशेष सावधानी अपना किसान हुकन अनुरोध करगिल बा।
5: मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि निशुल्क 11:55 हो। कृषि तथा पशुपन्छी जिज्ञासाका लागि 11:35 सम्पर्क कर्कन अपनाउक र बुलेटिनके बारेमा जानकारी लिन सक्ने बाटी।
4: कृषि ओ पशुपालन सम्बन्धी जिज्ञासा केलक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदकै पैसा नैलग्न नम्बर 11:35 हरेक सोमबार सन्ध्याकै 5 बजेसे 7 बजेसम्म फोन गर सकिन्छ।
5: अब हाम्रा सुन्टीबाटी कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रमका पुछारमा आशिकली आप पाला हिल्बा हमार प्रश्न अपनक जवाब
6: आजिक प्रश्न बा तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुना बासनाधार धान के नाम का हो। प्रश्न फेरो सुनी तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुना बासनाधार धान के नाम का हो।
3: यी प्रश्न के उत्तर अपनाउँग्र जन्लबाती कलसे 9853309161 मा आफ्न नाउँ ठेगाना सहित एक हप्ता भित्र एसएमएस मसिन उत्तर पठाका सहभागी बन सिक्दी सही उत्तर पठाइलक हुकनसे एक जहन गोला पठासे विजेता छानका कार्यक्रम के तरफ से 100% पौहार देने बाजी
6: आप पाला हिलबा गैलक कार्यक्रम हाम्रो पुछलक प्रश्न के सही जवाब देना विषयमा हमार पुछल प्रश्न सही जवाब हो एजोला यी प्रश्न उत्तर ढेर जन संग्रह लिख पठाइल रह यी मध्य मन से एक जन गोला पठा मन से विजेता घोषणा कर लाटी उहाँ मित ठाकुर बाबा नगरपालिका एक खोडाउके खुशीराम थारू खुशीराम हन हार्दिक बधाई बा
5: पुरस्कार के ला अपना एक अठार भित्र अपन परिचय खुल्ना काटले कन्हा टाइगर एफएम का कार्यालय मन सम्पर्क कर सिक्ने बाटी
4: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन सकल्पा छ अपन मनमा लागल विचार र कृषि खेती के विषयमा कोनो प्रश्न वा जिज्ञासा हुई कलेसे अपने हुक्र अपन फोन मसे कह सिक्ने बाटी ओ एसएमएस इमेल मसे फेल लेखी सिक्ने बाटी अपन जवाब म विचार र प्रश्न धरक लाग कृषि अनुसन्धान परिषद के पैसा निलग्न फोन नम्बर 1135 मा लेलक निर्देशन के आधारमा रेकर्ड कर सिक्ने बाटी पुस्तक रेडियो टाइगर के सम्पर्क नम्बर 0840401888 ओ मोबाइल नम्बर 9858309161 मा फोन कैक रेकर्ड कराई ओ लिखाई फिर सिक्ने बाटी पुस्तक रेडियो टाइगर एफएम @gmail.com मा फिर अपन जिज्ञासा पठाई सिक्ने बाटी
3: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के और ऐना भागमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद के कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन हो कृषि विज्ञ से लिखल सल्लाह सुझाव ऐना हप्तामा अपनाई सेक जिना कृषि सम्बन्धी थ्योर जानकारी सँग और मेरमेरी गतिविधि फैलेका ऐना भागमा ध्यान हुने नै बा कार्यक्रमका ऐना भाग किन सुन्ति रवि कार्यक्रम सुनके सुझाव सल्लाह फेर्न लिख पठाइने बाटीकन आशा गर्दी राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर संग संघरिया आरटीओ मैतिकाराम फिना बिदा हुटी राम राम नमस्कार।

0: कञ्चनपुर जाने बाटो कुरिकाओ बर्दिया। प्रोप्राइटर हेमराज आचार्य, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98482974774।
1: रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ट्ज।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू मैं लव क्या जाने, लंदन से अमेरिका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या न माने, ओ डी।